गुरुमुख पीवे सहज समाए जीवा हरस रही अकार। गुरुमुख पीवे सहज समाए रस जन चाको जी पाई।

0: नानक हर सो हर गुण गावे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोट महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारी चौकी चो गिरद हमारे। राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल। पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी। ताकि सेवन बिरति जासी अनद कर है तेरे दासा जा पूर्ण हुई आसा। बिलावल महला पंजेवा। ताती वा उन लगई पार ब्रह्म शरण आई। जो गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई।

हे ग्रीव निवाज दातार पातशाह जी, आप जी के हजूर अरदास है। दीवान दी समाप्ति उपरंत आपने पावन श्री मुखवाक बख्शिश कीता। आप जी दे सुंदर स्वरूप

राखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले जी, राखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले जी।

राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले देग तेग पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे ग्रंथ मा

प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आव ही बहु चित मद भार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा अभंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भार नाढ़ अन दंड बाढ़ चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना करमंग ना काए अजन्मंग अजाए ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अधिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजंग प्रभाहै के धर्मंग तुजा है के आशोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतंग कृति हैं के छत्रंग छत्री हैं के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रंग बेहिनै के एकै अधिनै के रोजी रिजाकै रिहिमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफुबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वतर माने आए के सर्वतर दाने आए के सर्वतर गावना है के सर्वतर पावना है के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर साजा है के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर जा हो के सर्वतर पा हो के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर काला है के सर्वतर पाला है के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर सोखा है के सर्वतर पोखा है के सर्वतर तराण है के सर्वतर प्राण है के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर माने आए सदैवंग प्रधाने आए के सर्वतर जापे आए के सर्वतर थापे आए के सर्वतर पान है के सर्वतर मान है के सर्वतर इंद्र है के सर्वतर चंद्र है के सर्वंग कलीमै के परमंग फहीमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुसनुल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुकत विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं
समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुबंग सर्ब भागे सो सर्बा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप है, अछेज है, अछूत है, के नरकंग परनास है, पृथ्वल प्रवास है, निरुकत प्रभा है, सदैवंग सदा है, विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुकत सदा है, विभुगत प्रभा है, विभुगत प्रभा है, अनुकत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अदूत है, अनास है, उदास है, अतंत है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोतराय ना पुत्राय ना सत्तराय ना मित्राय ना ताताय ना माताय ना जाताय ना पाताय निरसाकं सरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चराग है, के कामल करीम है, के राज करहीम है, के रोजी देहांद है, के राज करहिंद है, करीमुल कमाल है, के हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकान है, हिरासुल फिकान है, कलंकं परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं परनास है, बेहस्तुल निवास है, के सरबुल गवान है, हमेशुल रवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परं परम ईश है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुर्रत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मद भार छंद त्वै प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार
आदीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनबरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मानिया है जग जानिया है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्व पास्या है सर्वनाश्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खाल खंडस है पारते पार है करुणाकर है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंग पर है करुणालय है निरपनायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हर्ता हार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्मवास है जस के जस है पूजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पूजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रहीमे चतर चक्कर वर्ते चतर चक्कर पुगते सोयं भव सुबं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बिपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवी त्वै प्रसाद सुवइये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बिद नियावत सीस ना जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत काउ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन मातन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपैंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपैंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपैंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन तेरे लोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेसर बिसन सची पत अंत फसे जाम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रास है पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिये सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहौं सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है पातशाही दसवीं कबेओ बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहै हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखे सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करिया सब बैरन कौ आज संघरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बार चाहऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिखे हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास ने वरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता
काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को साव गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धार सब हूं। जेते बदन श्रेष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंभ, आदि अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप आपुनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम, भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे अस तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्या है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तनक मह हरि हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी। सर्ब ठाउर मोहो हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख ना तिसा व्यापत कोई। अडिल सुनै गोंग जो याहे, सो रसना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना, तिन नर के रहै हो। जो याकी एक बार, चाओ पई को कहै चाओ पई।
संबत सत्रह सहस पनिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय भादरव सुदी अष्टमी रवि वारा तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जाबते तुमरे ताबते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनि वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घरता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया धुर कर्म पाया तुद जिन का उसे नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमानी देह निमानी लिवै बज हो क्या करे विचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जन पावै पावै ता सो जन देहे जिसनो होर क्या करहै विचारिया एक भरम भूले फिरहै दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा भावै कहै नानक जिस देहे प्यारे सोई जन पावै आवहो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी
करहै कहानी अकथ केरी कित दुवारै पाइयै तन मन धन सब सौप गुर कौ हुकम मन्यै पाइयै हुकम मन्यहु गुरु केरा गावहु सच्ची बाणी कहै नानक सुनहु संतहु कथिहु अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम पुलाया माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया कहै नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहै नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखान ए आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहै नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता हकेरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज त्रिसना बहुत नाही बोलना खन्या हो तिखी वाल हुनिकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समानी कहै नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए हे तिवै चलहै जिन्ना मार्ग पाव हे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे जिसनु कथा सुनाए हे अपनी से गुर द्वारै सुख पाव हे कहै नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलाव हे एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुरहो लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्लां गल्ली किनै ना पाया कहै नानक शब्द सोहिला सत गुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहै नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विन सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो वहो शब्द लाग हो हर स्यो रहो चित लाए कहै नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए जियहो मैले बहरहु निर्मल जियहो ता मैले
तिने जन्म जुवै हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनहो विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिने जन्म जुवै हारिया जिया हो निर्मल बाहर हो निर्मल बाहर होता निर्मल जिया हो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी कूड़ की सोए पहुचै नाही मनसा सच समानी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जिया हो रह गुर नाले गुर के चरण हिरदय त्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रह परनै गुर बिन अवर ना जाने कोए कह नानक सुनहो संत हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर तेवे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछो हो बिबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देख हो बिन सतगुर मुक्त ना पाए आवहो सिख सत गुरु के प्यारिहो गावहो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारग पाणी कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु ना जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी कह नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाय कै करता आपे हुकम वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यो लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरित शास्त्र पुन पाप बीचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रैन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहो विसारियै मनहो क्यों विसारियै ए वडदाता जे अगन मह आहार पहुचावै ओस नो केहो पोहे ना सकी जिस नौ अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ

0: अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासाय हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठाए सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाओ निद आवै ताए सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन देठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निबाही तिना समूह शहीदा सिंघा दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बूढ़ बाले बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेतानियां दे तान नेउटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी महान कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंज बाणियां दे नितनेम संपूर्ण होए हन महाराज अगाध बोध बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फला देच दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नूं अपने दरो घरों नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़ दियां कला बख्शिश करके करतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउनियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने अते महाराज शरीरक तौर ते तंदुरुस्तियां प्रदान करनियां आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंचामृत श्री कड़ाह प्रसाद जी दी देख सजा के हाजर है ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ

महाराज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता, गुर जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, सतगुर मेरा सर्ब प्रतपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै, सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट भई है सबनी थाई, सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा घर दी बाण, सतगुर कै हौ साध बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिन गुर सेव्या तिस भावना व्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै, नानक सो

किल बिख पाप दुख लह जावे, फिर चढ़ी दिवस गुरबाणी गावे, बहदियां उठदियां हर नाम ते आवे।

सत्संग जी अंतर्गत होके अपने नाम ने सुनना करना जी ओ दो तीन मिनट वास्ते जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान देना जी ओ जिन्हां गुरमुखां नूं नाम नहीं सुनदा अंतर्गत सास ग्रास सिमरन विच ध्यान रखना जी ओ श्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना श्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना कृपा करके नेत्र बंद रखने विचारां तों मुक्त होके अपने नाम विच ध्यान देना जीओ विचार मारे तरे तारे उल्ट जो ना आए

चेत ले निस दिन मैं प्राणी। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह।

पवन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु जी दी साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी सरबतर माई भाई गुरसिख अमृत वेले तो सतगुरां दे दरबार दियां हाजरियां भरियां ने सतगुरां दे दीद ने दीदार प्राप्त होए ने गुरु संगत विच सज करके गुरु संगत विच सज करके अमृत बाणी सरवण करके गुरु गुरु जी दे जाप नूं जप के जीवन दे लाहे प्राप्त कीते ने साध संगत दियां अमोलक कड़ियां साध संगत दा एक ऐसा नाता है एक ऐसी रिश्तेदारी है दुनियावी सारियां रिश्तेदारियां तो श्रेष्ठ है और दुनिया दियां जिन्नियां नेड़े तो नेड़े दियां रिश्तेदारियां होण साध संगत दी रिश्तेदारी सारियां तो श्रोमणी है ते संगत दी रिश्तेदारी अग्गे तुश हो जांदियां ने जिन्हें बैठे हो एक बार हाजरी लाओ आखो सतनाम श्री सब तो वडेरी रिश्तेदारी यही होंदी है अपने मापिया की जिन्हां ने जन्म दिता है मां बाप है दादा दादी है पड़दादा है भरा ने पुत्र ने यह सब तो वड्डिया खून का रिश्ता कहा जाता है मापिया का रिश्ता जिहड़ा खून का रिश्ता कहा जाता है मेरा दादा है मेरा बाप है मेरा पड़दादा है मेरा पुत्र है मेरा भाई है दूसरी रिश्तेदारी सारिया तो श्रेष्ठ यह भी मनी है ये मेरा नानकिया का घर है मेरी मां मैनू जन्म देने वाली ने इन्हों के घर जन्म लिया ये मेरी नानी है ये मेरा नाना है ये मेरी पड़नानी है ये मेरा पड़नाना है ये मेरा मामा है ये मेरी मासी है मासड़ आ बात बनती है तुहाडे सामने है। तीसरी एक होर बड़ी नजदीकी रिश्तेदारी मनी जाती है जिस वेले विवाह आनंद कारज हो जाता है ये मेरा सोहरा बाप है सस मां है आ मेरी रिश्तेदारी साली ते साली दी बन गई है आ फलानी बन गई है। श्री मान भाई गुरदास साहब जी कहते ठीक है सब सत्कार योग है पर जड़ी साध संगत की रिश्तेदारी ओदे सामने तुश है तुश तो भाव बिल्कुल थले है तुसी कहो जी ओ किवें श्री मान भाई गुरदास साहब जी ने कबित बड़ा प्यारा कलम बंद किया है भाई साहब जी कहिंदे नहीं दद सार मापियां दा घर दादियां दा घर बाप दा घर नहीं दद सार पिता पितामा पार पितामा सज्जन कुटुंब सुत बांधवना भ्राता है क्या बात है इहदी कथा मस्कीन साहब जी ने भी की है नहीं दद सार दादियां दा घर पेकियां दा घर पिता बाप पितामा दादा पार पितामा पड़दादा ये चल पईआं ना दादकियां दा घर है मापियां दा घर है नहीं दद सार भई नहीं रिश्तेदारी कामयाब नहीं है नहीं दद सार पिता बाप पितामा दादा पार पितामा पड़दादा सज्जन कुटुंब सुत बांधवना भ्राता है ना भई सज्जन ने ना भरा ने ते ना पुत्र ने रिश्तेदारियां तुश मात्र ने खत्म हो जांदियां ने। दूसरा बोल श्री मान भाई गुरदास साहब जी कहते नहीं पहला नहीं लिखिया नहीं ननसार नानकियां दा घर माता परम माता वृद्ध माता मामू मामी मौसा बिपद बखियाता है भाई नहीं भई ये नानकियां दी रिश्तेदारियां भी तोड़ नहीं निभण वालियां माता मां परम माता नानी बिरध माता पड़नानी नहीं ननसार माता परम माता बिरध माता बिरध माता तो भा पड़नानी मामू मासी बिबद बख्याता प्रगट तीजा बोल कहिंदे नहीं ससुरार सहुरिया का घर आ गया सास ससुरा सारी ओ सारी
ਨਹੀਂ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰ ਜਾਚਕ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਨ ਬਸਣ ਧਨ ਧਾਮ ਕਹੁ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਜੈਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਤਿੰਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਾਤਾ ਗੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਰਸਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਣਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਸਨ ਵੀ ਅਪਰਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕਿਟੈਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ।

मेरो गज जेहबा मेरी काती मप बप काटो जम की फांसी कहा करो जाती कह करो पाती राम को नाम जपो दिन राती रांगण रांगाओ सीवन सीवो राम नाम बिन करी ना जीवो साचे नाम की लाग फिर बोलो साचे नाम की फिर बोलो साचे नाम की फिर बोलो साचे नाम की उत भूख है खाए चली है दुख अंदर नाम की भूख लग जावे। हर वेले गुरुद्वारा साहब आउंदियां समूह संगत जांदे हो वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे जाया करो तो वाहिगुरू वाहिगुरू करदे आया करो। जदों गुरुद्वारा साहब नूं तुर पैंदे हो ना बस उदों कोई गल ना होवे उदों तुहाडी साडी सुरत विच गुरु गुरु चलदा होवेगा तां वधेरे कृपा है। गुरुद्वारे आउण लग्गियां दुनियावी गल्लां नहीं किसी की निंदिया नहीं चुगली नहीं गुरुद्वारा साहब जिवें किवें आउंदे हो उदों सतनाम श्री भुल्लां दीआं माफ़ियां प्यार सहित आखो सरबत दा। अज आवाज स्लो क्यों है ठंड करके कि जां वैसे ही मैं तो पखा चला दे भाई साहब कहिंदे बाहर हवा वगदी तुसीं पखा चला लिया ते तुहाडी आवाज ही नहीं आई आखो गज के सरबत दा वेख्या बन गई ना गल इदां ही कृपा गुरु दी हुंदी जे फिर आखो सरबत दा फिर आखो सरबत दा नानक नाम तेरे पहाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा नंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद।

गुरु सवारी संगत जी बहुत प्यार विच जुड़ बैठे हो। आओ सारी संगत प्यार सहित गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार ज्ञान दे सागर राजन मैं तू राजा कहिए भूमन मैं भूमा ठाकुर मैं ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा पिता मेरो बड़ो धनी अगमा उस्तत कवन करी जय करते पे करहे बिस्मा आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आद गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरु जी दा खास रूप साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा प्राप्त होई है।

सत संगत मिले सो तरिया। कृपालु दातार साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी बख्शिश करदे ने सो तरिया साध संग। सत संगत दी इन्नी वड्डी वड्याई है, जिहड़ा प्राणी संगत विच आ जांदा है गुरु शब्द द्वारे इस संसार समुंदर तों तर जांदा है। कबीर साहब जी दे अमृत बचन ने कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बार बार ज्यों बन फल पाके भोएं गिरह, बोर न लागे डर। 84 लाख जूना ने और केवल मनुख वास्ते रस्ते खुला, बाकी सब बंद ने। एक आप जी नाल अलंकार सांझा करन दा जतन करा, समझ मेरे ख्याल वधेरे आ जावेगी। एक बार प्यार दा सबूत दे के जरूर आखो सतनाम श्री, फिर आखो एक बार सतनाम श्री। कहिंदे ने एक ऐसा किला है और उस किला एवें दा है जिस किले दे 84 दरवाजे ने, जिस किले दे 84 दरवाजे ने, ते उस किले दे 83 दरवाजे बंद ने, 83 दरवाजे बंद ने और इको ही दरवाजा केवल खुला है। तुहानू समझ वधेरे आवेगी। 83 बंद का पता लग गया, खुले का एक है। उस किले दे विच एक ऐसा आदमी प्रवेश कर गया जिन्नू नेत्रां तो दिसदा नहीं, जिसनू नेत्रां तो दिसदा नहीं और उहदा एक हथ भी काम नहीं करदा, हथ कटिया होया है, केवल इको हथ है, नेत्रां तो दिसदा नहीं, हथ भी एक है। ते नंबर 3 सिर तो बिलकुल गंजा है, जिन्हों कहिंदे प्लेन टेंड निकली होगी बिल्कुल। उस किले विच एक इस तरह का आदमी जिहड़ा प्रवेश कर गया, फिर बेनती करा, किला ऐसा है जिहदे 84 दरवाजे ने, 83 बंद ने, एक खुला है। उस किले विच एक ऐसा बंदा प्रवेश कर गया जिसनू नेत्रां तों अखियां तों दिसदा नहीं, हाथ एक है, एक हाथ कटिया होया है और सिर तो बिलकुल गंजा है। उस किले विच ऐसा बंदा आया, उन्हें आवाज दिती भी कोई ऐसा मनुख है जिहड़ा मैनू इस किले चों बाहर कढ देवे। सुभाविक है जदों कोई किले विच ऐसा बंदा जावेगा पुकार ते करेगा, जे उदों निकलिया ना जांदा होवे। उन्हें आवाजा दित्तियां भी इस किले चो मैनू बाहर कढ दिओ। किसी ने उहदी आवाज सुनी, उसने आवाज सुन के उसनू यह गल कही भी जिहड़ा तेरा हथ कंब करदा है ना, कम कर रहा है, एक ते है ही नहीं, एक कम करदा है, उहदे नाल दीवार दे नाल नाल कसरदिआं कसरदिआं टौंहदिआं टौंहदिआं तुरिआ चल, एक दरवाजा खुला होएगा। जदों तेरा हथ लगेगा खुले नूं ते तू हां जी बाहर निकल जावी। हुण जिस वेले ओह हथ टौंहदिआं टौंहदिआं उत्थे पहुंचिआ खुले दरवाजे दे कोल, उत्थे लगी है शैत वाली माखू, शैत लगा होया है,
ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਹਦਿਆਂ ਟੋਹਦਿਆਂ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਜਾਵਜਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਹੱਥ ਜਾਵਜਾ ਮਾਖੋ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਾਖੋ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤਾਣੂ ਕੀਤਾ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੰਜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖੁਰਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਤਾਣੂ ਕੀਤਾ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੈਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਖੁਰਕਦਿਆਂ ਖੁਰਕਦਿਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ 83 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਨਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਟੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੰਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਖੀ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਮੱਖੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਰਕਦਾ ਖੁਰਕਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ

तब कैसे गुण गई है। फिर गुण थोड़ी गाए जाने ने जदों चार पैर ने, मुख तो गुंगा है, दो सिंग भी हो गए ने, पशु की जून मिल गई है। तब तदों साहब जी कहिंदे फिर नहीं जपया जांदा सतनाम श्री। चार भाव दोए सिंग गोंग मुख, तब कैसे गुण गई है।

सी तेरी भगता तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगताओ तेरे भगत सलांत जी हर अनक अनेक नंदा तेरी अन करे हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर साध जी कर क्रिया खट करम करंता

परनवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की

तो रंग माया कह रहा जावता संजम तरन न गंवाया सिवा साधना जानिया राया कहो नानक अमनी चिकरम्मा

कबियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रचा पूर्ण होए चिरगी इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतबारा हमरे दुष्सवै तू काव हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो सुखी बस

संगरिया पूर्ण होई हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चार कोई अब न त्याग, जो बचाओ सो तुम दे पाओ, सेवा सिख हमारे तारी है, चौचन सत्र हमारे मारी है, आप आदे मुझे बरिया, मन का त्रास निवरिया, हुजो सदा मारे पच्चा, श्रिया सतोजू करियो रचा, राख लियमो राखन हारे, साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुर चतुर्दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए सिजु अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काका की आत्माचा, जमन काल जोगी शिव किया, वेद राज ब्रह्मा ज्योतिया, जमन का सलो सवारा, नमस्कार है ताई हमारा, जमन का सब जत बनायो, दीप दया जचन बुझायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी, शिवकुण को सबगुण से गुदिया, सतन को पल मोहम्मद किया, घट घट के अंदर की जानता, भले बुरे की वीर पहचानता, चिंतित कुंच रसूला, सबर कृपा दिशकर फूला, संतन उपाय ते दुखी

जब कर कला करता रा प्रजा तर्त तब दे अब्बारा। जब आकर करतो कब हो तुम मैं मिल तो दे तरसब हो। जेते बदन से सुतारा आप अपनी बूझू चारा।

धन का काचिंत न पेवा। आप अपनी बुद्धया जति बरनद भिन भिन तोय तेती तुमरा लखना जाय बसारा खिबे सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनुसूपा रंग पयो राव कई भूपा अंडज जेरज सेतज किनी उत्बज खान बौरच दीनी कौ फू राजा हवै बैठा कौ सिमबट पयो शंकर इकैठा सिगरी सिष्ट दिखाए चंपव आद जुगाद सरूसियम पव अब रचा मेरी तुम करो अब रचा मेरी तुम करो। सिख उबार असिख संग्राम दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करौड़ नकाता जे अस्तुता सन्नी परे तिनके दुष्ट दुख तवे मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब डारे जो कल को

ला दुष्ट अरिष्ट रे तुतकाला कृपा दितन जाय निहार हो ताके ताव तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हो दुष्ट शाह स्वै सके न को एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पाते ताई उबारा जिन नाम त्यारो कहा दर्द दुष्ट दो तेरा

आई दुष्ट दोगते देव बचाई सोइया पाए गए जबदे तुमरे तबदे कुआ तरे निया निया राम रही पुराण कुराना अनेक मत एक न मान्यो सिमरत सातर बेसब बोपेत गया मेक न जानियो सीरियस पान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तुहे बकान्यो दोहरा सगल द्वार को चाड गयो तुहारो द्वार बाए गए की लाजस गोविंद दास तुहार

ओस पिछै वजै पकड़ी, मुँह काला आगै पया, ओस अरल बरल मोह निकलै, जित चगू सुटदा मुआ, क्या होवै किसे ही दा कीचै।